0: तो ये तो उनका बहुत ही खूबसूरत गाना था, मेरा फेवरेट गाना भी है उनके गानों में। 1970 के दशक में 5 वर्षों तक हर वर्ष नीरज जी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार घोषित किया गया था बम्बई में, फिल्म इंडस्ट्री में 5 साल तक सर्वश्रेष्ठ के रूप में। उसके बाद उनको लगा कि होता है डिसिल्यूजनमेंट, मानव प्रेम के इस अन्यतम गायक को पिंजड़े में रखना संभव नहीं था, क्योंकि इतना लिमिटेशन हो गया था। वो अलीगढ़ के थे, वो इटावा के, आपके इन्हीं जन्मभूमि के नीरज जी हैं।
1: उनके से हमारा भी संबंध है।
0: अच्छा, इटावा से बताइए कि इटावा पुरवाली कोई गांव था, वहां पे उनका जन्म हुआ था।
2: जमाना था प्रदीप जी,
0: तो उनके स्वर
2: पता था कि इटावा। लेकिन आज जो है ना, नौसी कर दिया आपने।
0: नीरज जी के स्वर फिल्म के हीरो की नहीं, उनके हृदय की आवाज थी। फिल्मी दुनिया में उनका व्यावसायिक रूप नहीं बल्कि एक चुनौती थी, जिसका सफल समापन कर वो 4 वर्षों के बाद अलीगढ़ लौट आए। उन्होंने कहा अब 5 साल तक, छठे साल भी उन्हीं को मिलने वाला था, तो उन्होंने कहा अब नहीं होगा। तो वो अलीगढ़ वापस आ गए थे 4 साल के बाद में। इस लब्ध प्रतिष्ठित वरिष्ठ कवि का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा के पुरावली ग्राम में हुआ था।
1: अच्छा अच्छा,
0: पुरावली ग्राम में। तो नहीं, आपके तो भाई हो गए।
1: शैलजा जी,
0: चाचा जी।
1: शैलजा जी, देखिए अगर हम कोशिश ना कर रहे हैं तो ये कार्यक्रम आप नीरज जी के ही गीत गाती रहेंगे।
0: बताओ, मैं आपको, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में दो इतने जाने माने, सिडनी के जाने माने व्यक्ति मौजूद हैं कि मैं आपसे, आपको, विजेंद्र जी, इनका तो इंट्रोडक्शन जो है बिल्कुल देना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। पंकज जी हैं यहाँ पे हमारे साथ में, विजेंद्र जी हैं हमारे साथ में हैं, और दोनों का जो योगदान है आशा ग्रुप में, वो हमेशा हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। विजेंद्र जी, हम आपको हृदय से अपने हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, आपको बधाई देते हैं कि आपको रिसेंटली ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया था, और वेल डिजर्विंग, सबसे ज़्यादा डिजर्विंग, क्यों, आपका मैंने देखा है कि जिस तरह से आप परिश्रम करती हैं, जिस तरह से आप दोनों का, पंकज जी का, आपका जो डेडिकेशन है और आपकी, और इतनी ह्यूमिलिटी मैंने देखी है कि पंकज जी के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक बार इनकी जो बहुत बड़ी इनकी प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ मैं गई थी, तो इनको मैंने, जब पार्किंग करने में दिक्कत हो रही थी तो बाहर ये खड़े हुए थे, मुझे लगता कि ये यहाँ पे गार्ड है। जो कि मैंने कहा कि वो तो बड़ी कुर्सी में बैठे होंगे, पंकज जी अंदर डायरेक्टर हैं, वो तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अंदर बैठे होंगे, लेकिन इन्होंने हमसे कहा कि इधर पार्क कीजिए, उधर पार्क कीजिए, मुझे लगा कि ये अटेंडेंट है यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने कहा उनके ऑफिस में ले चलिए, ऑफिस में देखा तो खुद ही थे ये, तो इतने हम्बल कि। तो ये बताइए कि आप आशा ग्रुप में, आप दोनों का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ है?
3: सबसे पहले तो ये शैलजा जी और जो एफ दर्पण रेडियो के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार है हमारा, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आपने इतने बहुत बहान लफ्ज बोले हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, पर इतना डिज़र्व नहीं करते। हम तो सीधे से सिंपल से लोग हैं जो कि अपने दिल से अपने सीनियर्स को सर्व करते हैं और उनको वो होप देते हैं। आशा का मीनिंग ही होप है। होप मीन्स होप कि जो अपने माइग्रेटेड कंट्री में आके अपनापन फील सके, अपनी कल्चर से जुड़ सके, अपने लोगों से मिल सके, अपना म्यूज़िक एंजॉय कर सकें, ये होप कि जो हमारा बुढ़ापा है वो अपनी कल्चरली अप्रोप्रिएट एक्टिविटी से चले। सो यही हमारा मकसद है आशा में।
1: बहुत अच्छा मकसद है आपका। पंकज जी, आप भी कुछ आइए, माइक्रोफोन के पास आ जाइए और बोलिए कुछ, आपका क्या कहना है?
4: आपको नमस्कार, आप सब सुनने वालों को भी नमस्कार।
1: जब माइक्रोफोन के पास आ जाइए एकदम।
4: मेरा नाम पंकज है। मैं सब लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा, सब सुनने वालों को भी नमस्कार करना चाहूँगा। मैं अभी रिसेंटली ही आशा में ज्वाइन हुआ है, करीब मेरे को 3 साल हो गए हैं। और मैं जब मैं पहली बार आया था तो मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो मेरी ज़िंदगी में मकसद कुछ हो नहीं सकता। और मैं मैंने कहा नहीं, इसी में मुझे करना है। और मैंने कहा ये जो धन हम कमाते हैं ये सिर्फ हम, हमारी इसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होगी, वो तो कमाते ही रहेंगे, लेकिन जब हम मैं यहाँ जुड़ा तो मुझे तो लगा जैसे मुझे सबसे अच्छा मकसद मिल गया है और मैं चाहता हूँ हम इसको आगे बढ़ाएं और आप सब लोगों की हमारे हमें इनकी आप हमें मदद कीजिए कि हम कैसे आगे बढ़ाएं और जितना भी हम कर सकते हैं हमारे जितना जान हम करेंगे।
1: पंकज जी आप ये बताइए हमें कि आप खाते क्या हैं, वैसे तो आप सीनियर से जुड़े हुए हैं लेकिन 25 साल के लगते हैं।
4: देखो मैं खाता बोर्ड को छोड़, आप जब भी खिलाएंगे हम खाएंगे।
0: चलिए पंकज जी आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए, कब कब कितने दिनों से ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ से आए और आपकी जो प्रिंटिंग कंपनी है उसके बारे में बताइए।
4: मैं 1994 में ऑस्ट्रेलिया में आया था और मैंने 1999 में प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया था।
0: अच्छा।
4: और मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया में। और मैं तब टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करता था। और जब मैं 94 में 1994 में यहाँ पे आया तो जैसे हम लोग शुरू में मेहनत करते थे तो हमने भी वही सब मेहनत की है। यहाँ पे रेस्टोरेंट में बर्तन भी धोए हैं और अभी भी घर पे धो ही रहे हैं।
3: ये तो आशा में भी धोते
0: हैं। भी लगता है घर में भी आपको धुलवाए जाते होंगे, हैं आपको भी धुलवाया जाता होगा घर में।
4: वो मैं अपनी इच्छा से करता हूँ।
1: नहीं बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा हम विजेंद्र जी आपके बारे में वैसे तो सबको अच्छी तरह से पता है, आप भी बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं और आपने भारत में क्या किया और यहाँ पर कब आई।
3: अगर यही बताऊँ तो मेरी कोच 75 में आई थी।
1: अच्छा।
3: तो यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में PhD एजुकेशन में एडमिशन लिया था।
1: अच्छा।
3: और उसके बाद मैं
1: कौन से सब्जेक्ट में,
3: एजुकेशन। और बहुत लकली जो ये कहानी है तो बहुत सी है, माइग्रेंट स्टोरी के अगर करने लगें तो कभी कभी लगता है कि किताब की किताब लिख सकते हैं। तो अभी नए नए यंग होते हैं तो सोचते हैं कि इंडिया से आए हैं, मास्टर्स फर्स्ट क्लास में ऑनर्स में किया हुआ है, वहाँ पे तो प्रिंसिपल थे तो अपनी साड़ी डाल के और झुमके डाल के जो 25 साल का आदमी होता है कि चलते हैं। तो बोला कि वो सेंट्रल लिंक में आपकी तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का बहुत सिस्टम था, मल्टीकल्चरलिज्म नहीं था। तो एक बार हमने जा रहे थे ट्रेन पे तो स्टेशन पे हिंदुस्तानी को देखा, पीछे पीछे भागे, अरे भाई रुक जाओ सरदार जी रुक जाओ बात करिए। तो इंटरव्यू से मैंने कहा कि सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में इंटरव्यू देखा तो हमने बोला कि मैं चंडीगढ़ से आई थी तो हमारे पास तो मास्टर्स ऑनर्स में है, अच्छे अच्छे रेफरेंस हैं तो क्यों नहीं जॉब में जाते हैं। तो अभी भी याद है 12 आदमी बैठे हुए थे और हम अपनी साड़ी डाल के बीच में बैठे। तो एक तो ऐसे देखने लगे कि पता नहीं कहाँ से आए हैं, एलियन लैंड से आए हुए हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू करते लगे तो हमने कहा ठीक है। तो अभी भी मेरे को याद है पहला क्वेश्चन था कि आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है पर आपको यहाँ के बच्चों का कैसे पता चलेगा। तो जब आदमी जवान होता है ना तो बोल्ड भी बहुत होता है, अभी और भी ज़्यादा बोल्ड, बूढ़े होकर और भी ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं। तो हमने उनको बोला कि ये बताइए कि जो लोग हैं दूसरी साइड पे हेमिस्फीयर के उनका दिमाग अलग होता है। तो वो मेरा देखने लगे तो मैंने सोचा आप तो बैग पैक करके प्लेन में बिठा के भेज देंगे। दो दिन बाद फ़ोन आया तो कहने लगा यू आर द लेडी हु टोल्ड अस ऑफ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ठीक ही बोला था तो आप आइए हमारे ऑफिस में। तो मैंने कहा होगी छुट्टी होगी अब तो। अब तो मुझे पीछे पीछे और हम भागे चंडीगढ़ तक भागते पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने हमें पहली जॉब दी एजुकेशन डिपार्टमेंट एज ए स्पेशलिस्ट टीचर। सो दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ माई लाइफ। फिर मोर देन 40 ईयर्स एजुकेशन में एज स्पेशलिस्ट असिस्टेंट प्रिंसिपल इवन ऑफिशिएटेड एज प्रिंसिपल करके फिर पता नहीं बुढ़ापे में कैसे बुजुर्गों का ख्याल आ गया। जब थोड़े से बाल सफ़ेद हुए तो सोचा कि अब उसको छोड़ो, सोचो कि बुजुर्गों का कुछ करना चाहिए। तो वो शुरू में तो हमने जब आशा स्टार्ट की तो आशा का जो संस्कृत मीनिंग है होप, जो मैं जैसे पहले बताया है, तो हमने देखा कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हो रहे हैं उनके लिए शुरू किया। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा स्पेशली कोविड में, कोविड से पहले शुरू किया था तो हमें इस बात का बहुत फ़र्क है। ये मैं नहीं हूँ, ये जो वो लोग मेरे साथ चलते हैं, हमारे कितने ही वॉलंटियर्स शैलजा जी देखा होंगे, वॉलंटियर है जो कम्युनिटी है, हमारे सीनियर जिनको हमारे पे ट्रस्ट है, जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो हमने वो पहला था एक फोरम किया डिमेंशिया पे, फिर सीनियर राइट्स पे हमने 3-4 फोरम किए, और जो पार्लियामेंट इंक्वायरी एल्डर व्यूज में, तो मेरे को याद है 12 घंटे में बैठी रही रिसर्च करने के लिए, आर्टिकल लिखने के, लिखना तो आता नहीं था पर उस वक्त ये चैट जीटीपी भी नहीं होता था, नहीं तो आसान हो जाता है तो करके, तो हमने पार्लियामेंट इंक्वायरी में वो सबमिशन फर्स्ट टाइम इंडियन किया तो एक्सेप्टेड हुआ। उसके बाद करते करते तो सीनियर राइट्स में तो फोरम भी किए, देन वी रियलाइज कि एल्डर अब्यूज के साथ, डिमेंशिया के साथ सबसे जो है पैसे की नहीं होती ज़रूरत, एक टाइम आता है लोनलीनेस, अकेलापन,
0: बिल्कुल
3: अपनापन,
0: बिल्कुल ओके,
3: दिल करता है कोई बात करे, कोई इतना ही कह दे कि आप कैसे हैं, आपको प्यार से बोले, तो उसी से जो है वो जो खजाना बहुत ज़रूरी है। तो एक ग्रुप हमने शुरू किया, एक के बाद फिर कहते जी दूसरा शुरू करो, वहाँ पे ज़रूरत है। अब करते करते हमारे हर महीने 9 ग्रुप चलते हैं, क्रोज नेस्ट से चलते हुए वेस्ट राइड में पहुँचते हैं, गोल्डन पहुँचते हैं, फिर रॉजिल में, लिवरपूल में अभी सेटेड में हुआ था, 2 ब्लैकटाउन में चलते हैं, वेंटवर्थविल में, और अभी उम्मीद कर रहे हैं कि स्ट्रैटफील्ड में एक और नया नेक्स्ट ईयर चलेगा।
1: बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो ज़रूरत है हम लोगों की। और ये लोनलीनेस है, ये बड़ा एपिडेमिक है, और इससे आदमी के की हर बात पर फर्क पड़ता है, स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है,
0: बिल्कुल
1: मेंटल फर्क पड़ता है, ऐसे शैलजा जी ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगी।
0: ये कि एक अमेरिका में एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में उन्होंने 60+ लोगों को 2 उसमें डिवाइड किया था, तो एक जो लोग थे वो लोग तो चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने के लिए और सब कुछ, जैसे आप क्या है कि गाने, पुराने गाने, उन्हीं में लोगों को इतना उत्साह लगता है, मैंने देखा है किस तरह से लाइवली हो जाते हैं लोग। तो ये जो 2 ग्रुप थे, एक जो ग्रुप था वो घर में ही रहा, दूसरा ग्रुप जो था पिकनिक, एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे गए थे, तो उन्होंने देखा कि इस स्टडी में इतना बड़ा डिफरेंस था 2 लोगों में। जो लोग एक हफ्ते के लिए हॉलीडेज़ के लिए गए थे, उनकी जो टेम्परमेंट था, वो उनका जो लेवल ऑफ मूड था, वो उनसे कहीं ज़्यादा था कि जो लोग घर में रहे थे। तो आपने जो काम किया है ये तो बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल है, कि और मैंने देखा है कि कितना लोगों में उत्साह रहता है, कि हर किसी को लगता है कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, यानी हर उम्र के लोग उस खड़े हो के और उसमें ठुमकते हैं। तो ये
3: देखिए ठुमकने की बात, जब 91 ईयर ओल्ड का इंसान जो कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, कि मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, जब वो गाना, कभी कभी मैं वीडियो में वो फेसबुक में करती हूँ तो बाद में देखती हूँ, पहले ऐसे बैठे होते हैं, फिर थोड़ा सा हिलते हैं, फिर थोड़ा सा उठते हैं, फिर आके फ्लोर में
0: फिर भूल जाते हैं, होते हैं,
3: फिर बाद में नाचने लगते हैं, तो वो जो खुशी मिलती है, तो ये हम गाना नहीं है, उनके साथ ये मेमोरीज क्रिएट करते हैं, उनको एक मकसद मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है कि हम वैल्यूड हैं, और उनको कल्चर से कनेक्ट होता है। जो माइग्रेशन के बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने घर को छोड़ना, अपनी फैमिली, रिश्तेदार, अरे इंडिया में तो वो सब्जी वाला भी बातें करता है,
0: बिल्कुल
3: माई आती है, सारी सारी सारा समाचार देती है, गॉसिप सब बता देती है, अरे यहाँ पे तो अपने बच्चे के घर में भी तो फोन करके जाना पड़ता है,
0: बिल्कुल
3: अरे प्राइवेसी, कहीं हमारी प्राइवेसी खत्म ना हो जाए,
0: बिल्कुल।
3: तो कल्चरल शॉक तो है, पर जो कल्चर वही होती है, जिस वो खाना जो जिससे हम बचपन से खाते हैं, जो गाना सुनते हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारी कल्चर है, तो वो भूलते तो नहीं है। तो इसके लिए जो आशा में आके यही करते हैं कि एक तो ये है कि नो रिलीजन नो पॉलिटिक्स, आइए मस्ती करिए। तो कभी कभी लोग कहते हैं हम भजन करें, कीर्तन, तो मैंने कहा जी गुरुद्वारे में चले जाइए, बड़ा अच्छी बात है, हम भी जाते हैं, संडे को जाते हैं,
0: और क्या, बिल्कुल।
3: पर यहाँ पर आके आपको वैल्यू होनी चाहिए अपनी, जो दिल करे, कोई जज करने वाला नहीं है। और अभी बहुत अच्छा लगता है जबकि हमारे सीनियर्स जो टेम्परेरी आते हैं बच्चों के पास, कभी कभी 4 बार आते हैं कुछ साल बाद, कहते हैं कि अब जाने को दिल नहीं करता, तो इससे ज़्यादा और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, कहते आशा में आते हैं,
0: बिल्कुल।
3: तो इसीलिए हमारा एक जो है ऑनलाइन संडे को 4:30 बजे होता है, लास्ट संडे में, जिसमें कि अजमेर में एक पूरा ग्रुप है, वो हमारा ग्रुप अजमेर में भी है, अच्छा। वो जो आर्टिस्ट हैं वहाँ से गाते हैं,
0: बिल्कुल,
3: जो सीनियर यहाँ से चले जाते हैं लास्ट मीटिंग में चंडीगढ़ से, अजमेर से, इंदौर से, गुजरात से, तो ग्लोबली पीपल जुड़ जाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, और ये तो मल्टीनेशनल प्रॉब्लम है जिसका आपने सॉल्यूशन ढूंढा है, बहुत अच्छी बात है। आशा है कि आपका आपके इस मुहिम का प्रचार प्रसार और अधिक हो और बहुत अच्छा रहे। तो आपसे बात जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच में हमारे पास रंजना जी ने एक और वार्ता भेजी है,
0: ठीक है,
1: हम उसे सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: अभी जो मोदी जी का विजिट हुआ था कई कंट्रीज में, उसके बारे में है।
0: जब तक आप लगा रहे हैं विजेंद्र जी, आपके कितने मेंबर्स होंगे कुल मिला के? 9 तो आपके सेंटर्स हैं, लेकिन
3: मेंबर्स को अगर काउंट करने लगे तो हजारों में भी कह सकते हैं। हर महीने जो हम ग्रुप में करते हैं, अभी जो व्हाट्सएप का ग्रुप है 350 से ज्यादा वो है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी 300 ज्यादा लोग हैं, और जो लोग आते हैं उनका नाम हर रोज भी नहीं भी लिखा हुआ, जो इवेंट में भी आते हैं, मोर देन 400 फेस टू फेस हमने मील्स होते हैं, और 1000 कप्स ऑफ टी हर महीने उससे ज्यादा हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
3: तो इसका मतलब वो इतने मेंबर चले गए। जो फेसबुक में जो नहीं आ सकते, कुछ बुजुर्ग हैं अपनी मोबिलिटी के लिए, हेल्थ के लिए, डिस्टेंस के कारण करके नहीं आते, वो कहते हैं कि जब आपका फेसबुक में होता था वो ज्वाइन करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो मोस्टली जो है 1 मिलियन तक फेसबुक हर महीने होता है, तो इसका मतलब है हमारे इतने 1 मिलियन मेंबर्स हैं ना, मेंबर्स के लिए कोई स्टैंप तो नहीं लगानी होती।
0: बिल्कुल,
3: सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। कुछ लोग फिजिकली आ सकते हैं, कुछ नहीं, तो ये नहीं कि सब बुजुर्ग ही हैं। जो सबसे छोटा जो है 5 साल से बच्चा है, और ओल्डेस्ट अवर जो आके अभी तक आते हैं 92 तक।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आप इतना बड़ा मुहिम चला रही हैं तो फंडिंग कहाँ से होती है?
3: फंडिंग तो देखिए, वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि आशा को आशा देवी बना लेना तो फंडिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फिर अपना वहाँ बैठ के तो फिर फंड आते रहेंगे। फंडिंग की तो देखिए सबको प्रॉब्लम होती है, हम लोग काम भी करते हैं, बजट होता है, फिर भी कम हो जाता है, फंडिंग का इशू है। पर मैं सोचती हूँ कि अगर देखिए, इट मे बी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, डिफरेंट वे से करते हैं। मेंबर्स की मेंबरशिप तो $50 है, लेस देन $1 ए वीक, तो उससे कुछ नहीं बनता। अभी हमारा सैटरडे को लिवरपूल का हब था, 3 घंटे के $430 दिए हैं, इसलिए कि वहाँ पे ज़रूरत है, चाहे महंगा है या कैसे। अब खाना भी है, आपको मालूम है कि छोटा सा राइस और करी लेंगे तो $10 में कुछ नहीं बनता। और हम लोग ज़्यादा अच्छा खाना इसलिए देते हैं कि खाना इट्सेल्फ इज़ एक्टिविटी, शेयरिंग फूड बहुत प्लेयर है। अब आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आपके बच्चे यहाँ रहते हैं, आप आए हैं, तो हर कोई बजट के हिसाब से शॉपिंग करता है।
0: बिल्कुल।
3: तो आपका दिल करता है कि मैं ये बना के पराठा खाऊं या कुछ और, बच्चे तो पास्ता सा बना के उसमें थोड़ा सा दे दिया। अब बुजुर्ग क्या बोलेंगे, मेरे को और खाना है, बोलेंगे मम्मी डैडी आप मत ये खाइए। सो जहाँ पे हम उनको हेल्थी फूड देते हैं, पर जितना मर्जी दिल करके। सो कहने का मतलब है, मुश्किल तो होता है हर बार सामान लेके जाना, आर्टिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट को बुलाना पड़ता है सब। तो अभी तक तो वो कहते हैं ना कि भगवान का मिरेकल है, यस वी डू राइट ग्रांट्स। एक ग्रांट को लिखने के लिए 30 अगर क्वेश्चन है तो आप सोचिए कम से कम 12-13 घंटे लगेंगे, रिपोर्ट में भी 10 घंटे लगेंगे। पर हम लोग गिव अप नहीं करते, यस इन बिटवीन मिलती है कभी, पर जैसे लोग बोलते हैं अरे जी गवर्नमेंट ग्रांटे देती है, तो मैं कहते हैं ठीक है आपके पास चाबी है खजाने की तो हमें दे दीजिए, शायद आपको दे गए होंगे। तो वी डू गेट सम ग्रांट्स, और जो वेरी फ्यू डोनेशंस हमारे पास टैक्स डिडक्टेबल है। तो हम यही चाहते हैं कि कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल अब रेस्टोरेंट वाले हैं, चाहे वो ब्लैक टाउन है, राउज हिल है, वेंटवर्थ, महीने के में एक बार भी अगर एक बकेट राइस की एक दाल और सब्जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल।
3: अगर वो सपोर्ट कर दे तो हम उनको जो टैक्स डिडक्टेबल अगर फाइनेंशियल करें रसीद दे सकते हैं, और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी टू कम अलोंग, ये सब मिलके करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। ये हमारा नहीं, हमारी तो ये है कि जनरेशंस के लिए जो हमने शुरू की आगे बढ़ता जाए, अब पंकज जैसे यंग और वो लोगों को इसीलिए करते हैं कि आप लोगों ने आगे चलाना है, तो हम अपना पूरा टाइम लगा के एडमिन में पूरा कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हम हो ना हो पर चलता जाए, आशा बढ़ता जाए आगे।
1: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये है कि हमारी तो अपने श्रोताओं से गुजारिश होगी कि भाई जितना डोनेशन दिया जा सके अच्छी अच्छी संस्थाओं को, जैसे कि आपकी संस्था है आशा है, आशा मैंने कहा आपकी संस्था है लेकिन हम सबकी संस्था
3: हमारी है,
1: हम सबकी है,
3: हमारी आशा नाम भी हमारे ग्रुप का है, हमारी आशा।
0: बिल्कुल, हमें आशा है कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं सब आपको सपोर्ट करेंगे और इतनी अच्छी सर्विस है तो आप उसको उसका फायदा भी उठाएंगे।
1: फायदा उठाइए। अच्छा, इसी के साथ साथ अब मोदी जी की यात्रा के बारे में।
0: हाँ बिल्कुल, आप उनका बताइए।
5: तो श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया पैसिफिक की यात्रा पर थे। मैं यानी रंजना रमन आपके साथ उस वार्ता के कुछ मजेदार और कम बात की गई पहलुओं पर आपके साथ चर्चा करूंगी। एशिया पैसिफिक की धरती पर इस बार कुछ अलग ही माहौल था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतरा, ऐसा लगा मानो किसी देश ने अपने VIP वाईफाई का पासवर्ड ही बदल दिया हो और उसे कर दिया हो मोदी आया 2026। हर जगह कैमरे, हर जगह भीड़ और हर जगह वही पुराना सवाल, मोदी जी आज क्या नया करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। रक्षा, व्यापार और मोदी मैजिक। मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया इंडिया समिट में दोनों देशों ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर बड़े समझौते किए। ज्वाइंट मरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप को मंजूरी मिली, यानी हिंद महासागर में दोनों देश अब और करीबी सहयोग करेंगे। भारतीय समुदाय ने मोदी का स्वागत ऐसे किया जैसे IPL फाइनल में आखिरी ओवर चल रहा हो। कुछ विवाद भी हुए, जैसे कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह यात्रा अत्यधिक प्रचार वाली थी। मीडिया ने यह भी चर्चा की कि रक्षा समझौते चीन को चुभ सकते हैं। अब बात करते हैं जापान की। टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और मोदी सुशी मोमेंट। जापान में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर सहयोग, AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बड़े समझौते किए। जापानी कंपनियों ने भारत में निवेश बढ़ाने का वादा किया। एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा, भारत और जापान की दोस्ती उतनी ही मजबूत है जितनी आपकी सुशी की चावल की पकड़। जापानी मीडिया ने इसे क्यूट डिप्लोमेसी कहा। कुछ विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि भारत की सेमीकंडक्टर नीति अभी भी शुरुआती चरण में है और वादे ज्यादा और जमीन पर काम कम हो रहा है। बात करते हैं इंडोनेशिया की। समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक कनेक्शन। भारत और इंडोनेशिया में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की। बालिनी कलाकारों ने मोदी का पारंपरिक नृत्य से स्वागत किया। इंडोनेशिया के कुछ स्थानीय समूहों ने कहा कि भारत को पाम ऑयल आयात पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। फिजी, छोटा देश बड़ा दिल और भारत की सॉफ्ट पावर। फिजी में मोदी ने क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सहयोग पर बात की। भारतीय समुदाय ने भंगड़ा और फिजियन नृत्य का मिश्रण पेश किया जिसे मीडिया ने फिजी फ्यूजन का नाम दिया। कुछ आलोचकों ने कहा कि छोटे देशों में भारत की सक्रियता चीन के साथ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। पापुआ न्यू गिनी, रणनीतिक साझेदार। भारत ने फूड सिक्योरिटी, तकनीक और ऊर्जा सहयोग पर समझौते किए। पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी के पारंपरिक सम्मान से नवाजा गया। विपक्ष ने कहा कि भारत को पहले घरेलू कृषि संकट पर ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं इस यात्रा का सबसे मजेदार पहलू। हर देश में मोदी के भाषणों में स्थानीय भाषा के कुछ शब्द शामिल थे और हर बार भीड़ खुश हो जाती थी। सोशल मीडिया पर एक मीम वायरल हुआ, मोदी जी जहां जाते हैं वहां की भाषा में नमस्ते बोलना नहीं भूलते और फिर वहां की जनता उन्हें नहीं भूल पाती। कुछ विवाद भी चर्चा में रहे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने कहा कि भारत की विदेश नीति अमेरिका चीन तनाव के बीच बहुत सक्रिय हो गई है और यह यात्रा उसी रणनीति का हिस्सा है। कुछ आलोचकों ने कहा कि यात्रा में अत्यधिक इवेंट मैनेजमेंट था। समर्थकों ने कहा कि यह भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने का एक तरीका है। कुल मिलाकर यात्रा कैसी रही? रणनीतिक रूप से मजबूत, मीडिया में हाई विजिबिलिटी, भारतीय समुदाय में अत्यधिक उत्साह, कुछ विवाद और कुछ प्रशंसा, और हाँ, मीम्स की भरमार। धन्यवाद।
6: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention The Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of The Open Radio.

0: Curry Master's complete curry mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश.
2: श्रोताओं, आपको ये लगा होगा कि आशा का जो मुखड़ा है वो तो बिजेंद्र जी हैं, कि आशा को आप की कल्पना नहीं कर सकते हैं बगैर बिजेंद्र जी के मुखड़े के. लेकिन उनके पीछे जो सपोर्ट ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो कहते हैं ना कि अनसंग हीरो, तो उनके साथ जो अनसंग सबसे इम्पोर्टेंट हीरो हैं वो पंकज जी हैं, कि मुझे लगता है हर तरह से वो सपोर्ट करते हैं. उनका भी कमिटमेंट अनकंडीशनल है और उतना ही है, और वो दोनों जो हैं पैशनेट पैशनेट अबाउट आशा. विजेंद्र जी, मैंने ये देखा था कि श्रीलंका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपके उसमें आती है अक्सर.
3: हाँ जी, उनके साथ जो सालिया जो हैं वो श्रीलंकन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं
2: जी,
3: और गोल्डन वाटर ग्रुप है
2: yeah.
3: तो उनके कोलैबोरेशन से हम मिलके प्रोग्राम करते हैं. वो हमारे प्रोडक्शन डायरेक्टर भी हैं, चार प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं
2: राइट,
3: और हमारे चार डायरेक्टर भी हैं बोर्ड में. तो जो सेकंड ब्लैक टोन का जो है अभी जो नेक्स्ट ट्यूसडे में होगा, ट्यूसडे में है सीनियर ग्रुप, वो श्रीलंकन ग्रुप है. तो क्योंकि हमारा कल्चर तो सेम है
2: जी,
3: सो हम तो चाहते हैं कि और लोग भी और ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ें, ताकि उनके लिए भी उनकी मदद से ही, उनकी हेल्प से सर्विसेज ज़्यादा दे
2: जी,
3: सकें
2: जी.
3: ताकि जो जो सबका बुढ़ापा है माइग्रेटेड कंट्री में, सच ए ब्यूटीफुल कंट्री ऑस्ट्रेलिया, तो किस कंट्री में आप बाहर से आके और आपको इतना मान मिलता है
2: हाँ.
3: तो बहुत ग्रेटफुल हैं जो हमारे बच्चे सेटल हुए हैं, हम लोगों की मान मिलता है, हमें मदद मिलती है. अगर हमारी कम्युनिटी जो साथ में आ जाए, तो ये जो है कि ये बुज़ुर्गों को नहीं है, बच्चों को भी हेल्प होगी. अगर आपके माँ बाप और आपके अंकल आंटी मालूम है कि वो हैप्पी हैं, तो आप भी खुश होंगे.
2: बिल्कुल,
3: तो अपने काम में अपना टाइम लगा सकेंगे, नहीं तो उनको देखेंगे या अपना काम करेंगे.
1: विजेंद्र जी, आपने कहा कि अगर और संस्थाएं भी साथ में आ जाएं तो अच्छा रहेगा. आप दर्पण रेडियो को भी अपनी अपनी आशा से जोड़ लीजिए.
3: थैंक यू जी, बिल्कुल, ये तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा. तो वी विल लव टू हैव यू अलोंग एज अवर पार्टनर. तो अभी हमारी वेबसाइट का अपग्रेड हो रहा है, सो वी विल पुट ऑल द सपोर्टर्स हियर. तो डेफिनेटली, और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ आपसे मिलते जाएंगे और आपके स्रोतों को मिलते जाएंगे, जिनको देखा नहीं पर फिर भी लगता है कि बहुत देर से जानते हैं.
1: और समय समय पर हमारे कार्यक्रम में भाग लेती रही है. और इसके साथ साथ आपका जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में हमें बताती रहिए, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा और हमारे श्रोता भी आपसे जुड़ेंगे. तो आप अभी आपके कौन कौन से कार्यक्रम होने जा रहे हैं?
3: देखिए जी, सैटरडे में अभी लिवरपूल हुआ था, ट्यूसडे में जो श्रीलंकन सीनियर्स ग्रुप है ब्लैकटाउन में, वेस्ट पॉइंट में, लेवल फोर में कम्युनिटी सेंटर में 11 to 2. थर्सडे को है राउज हिल, मेट्रो के $2.50 दो और एयर कंडीशन मेट्रो में बैठ के 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं. और ब्लू स्काई के अंदर आप वॉक करके फाउंटेन सा बाहर का देखेगा, लिफ्ट लेके ऊपर आइए, 11 to 2 राउज हिल में है.
1: अच्छा.
3: वहाँ पे योगा होगा, बॉलीफिट होगा, गाना होगा, और चाय के साथ आपको बिस्किट और स्नैक्स भी मिलेंगे, और गरम गरम राइस बने हुए, और अब सिंपल लंच भी मिलेगा.
1: ये बॉलीफिट क्या होता है?
3: बॉलीफिट इसलिए हमने किया है कि हम लोग ना एक्सरसाइज कम करते हैं.
1: अच्छा.
3: हम योगा तो कर लेते हैं, ब्रीदिंग वो भी बहुत ज़रूरी है, पर जो बॉडी है जिसको नहीं यूज़ करेंगे ना, वो पार्ट बेकार हो जाते हैं. तो उनको मोटिवेट करने के लिए हमने सोचा कि म्यूज़िक बहुत पावरफुल है, चाहे वो डिमेंशिया हो या कुछ और मेंटल हेल्थ. तो इन ए वे मेंटल हेल्थ, तो म्यूज़िक के साथ जो है हम एक्सरसाइज करवाते हैं. सो बॉलीफिट फिटनेस का प्रोग्राम हमने यूनिक हमने स्टार्ट किया था, पर बहुत अच्छा लगता है कि फेसबुक में देखते हैं इंडिया में भी, यहाँ भी जो जितने ग्रुप हैं उन्होंने करना शुरू किया.
2: हाँ,
3: तो हमें तो बड़ी खुशी होती कि कुछ अच्छा काम करते हैं तभी कॉपी करते हैं ना.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
3: तो अच्छी बात है.
2: तो श्रीलंकन के अलावा आपने फिजी और नेपाल के जो एसोसिएशन, उनसे भी कोलैबोरेट किया है.
3: पंकज जी आप बताइए.
2: हाँ, बताइए पंकज जी.
4: हम ने अभी नेपाल के जो है मिस्टर जो सब प्रोग्राम करते हैं
2: जी,
4: उनका नाम गुरदबंग है.
1: थोड़ा माइक्रोफोन के पास.
4: नेपाल के जो सीनियर एसोसिएशन का करते हैं वो गुरदबंग जी हैं. वो हमारे एरिया में वो भी इस तरह हम उनके साथ में जुड़ के कर रहे हैं
2: जी.
4: तो वो भी अभी हम लोग साथ में मिल के ही करेंगे. और फिजी में भी जो है अभी काफ़ी बड़ा कम्युनिटी है फिजी का भी, वो हमारे ही अपने भाषा में सब हम लोग बात करते हैं, वो भी हमारे साथ अब ज्वाइन हो रहे हैं. और हमारा ये जो हमारी आशा है, इसी तरह हम सबकी मदद से बढ़ती जा रही है और हम रुकेंगे नहीं, अभी तो हम शुरुआत ही है और आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग जितना कर सकते हैं करते रहेंगे।
2: बिल्कुल, क्योंकि आपका ग्रुप मुझे लगता है इतना स्टेबल है, इतना फंक्शनल है और स्टडी ग्रुप है, तो ये जो है बहुत सारी रिसर्च के लिए इतना अच्छा टॉपिक हो सकता है। एक तो आपने, मुझे वेगली याद है कि डिमेंशिया स्टडी में आपका ग्रुप इन्वॉल्व था कुछ सालों पहले,
3: अभी भी है, जो हमारा जो फोकस है अभी भी आशा में डिमेंशिया का है। तो पहली दफ़ा हमने डिमेंशिया का जब हमने फोरम किया था तो लोगों को मालूम नहीं था डिमेंशिया होता क्या है
2: जी।
3: डिमेंशिया के साथ स्टिग्मा अटैच्ड है। हम लोग कहते हैं कि इंडिया में बचपन में हम सोचते थे ना कि सत्रह बतरे हो गए, तो बूढ़े में सबके साथ सत्तर हो गए तो
2: सठिया गए हैं, सठिया जाते हैं।
3: तो एक मैंने जब बचपन में मैं सोचती थी दादी कभी वो पैदा ही बूढ़े होंगे, कभी कैसे यंग होंगे, तो बाद में अब समझ आती नहीं नहीं वो भी यंग थे। तो ये बुढ़ापा जो है दो किस्म का होता है, एक फिजिकल होता है एक मेंटली होता है। कुछ लोग तो 40 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग 80 साल में भी जवान रहते हैं।
2: हाँ।
3: पर जो बॉडी है वो अगर आप फिट रखेंगे और मेंटल आपका स्वस्थ ठीक होगा तो आप 110 इयर्स तक भी जवान रहेंगे। सो
2: आपका ग्रुप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझे ये लगता है कि अगर कोई यंग कोई भी हो, स्कॉलर हो यूनिवर्सिटी में कहीं, कि आपके ग्रुप के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए कि किस तरह से ग्रुप ने जो हमारे एल्डरली हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको किस तरह से एक राह दिखाई है और उनके लिए एक नया जीवन शुरू किया है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आपका ग्रुप तो चल ही रहा है लेकिन उसके अलावा आई थिंक जस्ट एन एकेडमिक एक्सरसाइज कि वॉट आर द पॉइंट्स एंड हाउ हमारी जो जनरेशन यहाँ पे है किस तरह से हम लोग जो हैं डिवाइड कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स यहाँ आते हैं और उनके लिए कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई उनकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं है, किस तरह आप प्रोवाइड कर रही हैं एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टॉपिक विच वी कैन थिंक अबाउट।
3: ये तो बहुत अच्छा लगेगा। डिमेंशिया के लिए आपको बताएं कि माइंड केयर का प्रोजेक्ट है लाटाबॉन यूनिवर्सिटी में, नारी के साथ हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी
2: जी।
3: और लास्ट ईयर पंकज भी गए, भी हमारे साथ गए थे, उसकी एडवाइजरी बोर्ड में थे
2: जी।
3: और बहुत गर्व से कह सकते हैं पहली दफा वन ऑफ द फोर्थ लैंग्वेज हिंदी में रिसोर्सेज बने हैं। वो बुक हमारे पास है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको लेके मे बी उसकी कॉपी भी बनवा देंगे। तो रिसर्च में उन्होंने हिंदी स्पीकिंग लोगों का कैसे क्या क्वेश्चन करने हैं रिसर्च हुई है। ऐसे ही डिमेंशिया ऑस्ट्रेलिया में इट्स डिमेंशिया नॉट ए डिस्ग्रेस जो वीडियो है अभी भी वेबसाइट पे है। सीनियर राइट्स में दो शॉर्ट फिल्म है आशा के साथ बनी हुई हैं। ये जो है रिसोर्सेज हैं। और न्यू साउथ वेल्स मल्टीकल्चर हेल्थ के जो भी इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होती है उसको हम सपोर्ट करते हैं, चेक करते हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो ट्रांसलेशन भी करवा के देते हैं। ये जो बिहाइंड जो चीज़ें होती हैं पॉलिसी मेकिंग में जितना भी हो सकता है हम इनपुट करते हैं। और मैं रीजनल जो मल्टीकल्चरल कमेटी है उसके अंदर भी हूँ तो हमेशा सीनियर्स का अपने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं। ये तो है जो बैकग्राउंड में करते हैं। अब एक्टिविटीज़ की बात है, एक्टिविटीज़ में ग्रुप में जब लोग आते हैं पहले तो तैयार होते हैं, कहीं जाना है,
2: बिल्कुल
3: उठेंगे, फिर चल के आएंगे, स्टेशन पर आएंगे, वॉक करेंगे, दूसरों से मिलेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होती है, चाहे योगा हो जाए चाहे बॉली फिट हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज। फिर उनको मिलके चाय एंड चैट होती है, उनको फिर गाने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है, एक्टिव हो जाते हैं और छोटी छोटी कम्युनिटीज बन गई हैं।
2: बिल्कुल,
3: वो नॉर्थ शोर में वहाँ पे मोस्पन के पास के और वहाँ भी एक ग्रुप बन गया है और जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं एक दूसरे मिलके फिर बाद में मिलते हैं पार्क में मिल गए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो आसपास जितने हमारे ग्रुप हैं उन लोगों की अपनी कम्युनिटीज बनती जा रही हैं।
1: बड़ी अच्छी बात है। पंकज जी आप कुछ कहना चाहते थे?
4: मैं ये कहना चाहता था कि हमारा जो बोर्ड है आशा, हमारी आशा का, उसमें विजेंद्र जी की जो सोच है, जो उनकी दृष्टि है, वो सिर्फ इतने तक ही नहीं है। इन्होंने अभी मिनिस्टर से भी बात करके जो हमारा नया एयरपोर्ट बन रहा है वेस्टर्न सिडनी में, उसमें जो भी हमारे सीनियर्स लोग आते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, तो उनके लिए बजिंदर जी ने मिनिस्टर से बात करके भी अप्रूवल भी लिया है कि जो साइनेज होएगी कि किस जगह जाना है जब आप एयरपोर्ट में उतरेंगे, तो उसकी साइनेज भी अब अपनी भाषा में वो इंस्टॉल होएगी एयरपोर्ट में। तो बजिंदर जी ने मिनिस्टर से अप्रूवल लेके वो इनकी मतलब दृष्टि ये सिर्फ यहाँ तक नहीं कि सीनियर्स के लिए, उनको कहाँ कहाँ सुख मिल सकता है उसमें भी बहुत कर रहे
1: हैं। बहुत अच्छी बात है पंकज जी। पंकज जी आप घर पर क्या भाषा बोलते हैं?
4: मैं घर पर क्या होता है कि जो मेरे साथ में होता है मैं उसको देख के बात करता
1: हूं। नहीं वैसे वैसे जनरली
3: मेरे साथ पंजाबी बोलते हैं तो चाइनीज वालों से साथ चाइनीज बोलते हैं,
4: हिंदी बोलते हैं,
1: हिंदी बोलते
2: हैं। आप तो रंग बदल हुआ है बिल्कुल।
1: अच्छा
2: जैसा रंग देखते हैं।
1: विजेंद्र जी आप कौन सी भाषा बोलते हैं?
3: पंजाबी।
1: देखिए ऐसा है कि पंजाबी के नाते मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि अगले महीने एक सेंसस होने जा रहा है, उसमें एक प्रश्न है, डज द पर्सन यूज अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश एट होम। अगर इसमें सिर्फ एक दो तीन मैंडरिन है, अरबिक है, वियतनामीज है, कैंटोनीज है, पंजाबी है, ग्रीक है, भारत से एक ही भाषा उसमें है पंजाबी। पंजाबी को मैं हिंदी से अलग नहीं मानता हूँ,
3: बिल्कुल नहीं।
1: तो ऐसा है कि इसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप और भी कोई भाषा बोलते हैं तो उसमें लिखिए। तो पंजाबी बोलने वालों से और सारी भाषा बोलने वालों से, अगर आप हिंदी जानते हैं तो जो सेंसस आ रहा है अगले महीने उसमें हिंदी ज़रूर लिखिए। अच्छा तो यह है कि आपको बधाई। पंजाबी देखिए पांच छह भाषाओं में जो भारत की एक भाषा तो है उसमें कम से कम। अच्छा इसी के साथ साथ अभी देखिए समय इतनी जल्दी निकल जाता है विजेंद्र जी कि पता नहीं लगता
3: है। समय निकलता है तो जल्दी जाता है।
2: इतना आपसे बातें करनी है और समय जा रहा है।
3: कोई बात नहीं, सारा दिन है हमारे पास।
1: नहीं, सारा दिन तो है।
3: रेडियो की चाय पिला दीजिए तो गर्म गर्म चाय हो जाएगी तो सारा दिन लग जाएगा।
1: नहीं ऐसा है कि मैं आपको अपना हमारे जो श्रोता लोग हैं उनसे वो क्या कह रहे हैं उनकी बातें सुना देता हूँ। राजेश पांडे बोलते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ मधुर भजन। उपाध्याय जी बोलते हैं रंजना जी व संजीव जी दर्पण टीम के श्रेष्ठ समाचार वाचक हैं, शुद्ध उच्चारण तथा उत्कृष्ट टाइमिंग दोनों की विशेषता है, साधुवाद। लंबे समय के बाद आशिमा जी को स्टूडियो में देखकर प्रसन्नता हुई। आज नीरज पर विशेष कार्यक्रम निश्चय ही आनंददायक होने वाला है। शैलजा जी तो नीरज जी के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां रखती हैं जो कि हम लोगों को शायद ही पता हो। निश्चय ही आज एक ज्ञानवर्धक मनोरंजक और कार्यक्रम की अपेक्षा है। यतीन जी बोलते हैं एंजॉइंग प्रोग्राम विच रिकेंडल आवर मेमोरीज। ऋचा जी बोलती है सुंदर भजन और समाचारों से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, रेडियो में और भी निखार आ गया आशिमा जी की आवाज़ से और उनकी आवाज़ में नीरज जी की कविताओं में चार चांद लग गए। शैलजा जी के मुख से नीरज जी के साथ उनके निजी अनुभव कविताओं को सुनकर नीरज जी की यादें सजीव हो गईं। राजीव निगम जी बोलते हैं नमस्कार जी, इट इज़ रियली नाइस टू नो द इन्फॉर्मेशन ऑन नीरज जी आवर ग्रेट इंडियन पोएट। ऋचा जी प्रदीप जी की कहानी सामायिक और विचारणीय है। राजीव निगम आई रिमेम्बर धर्मयोग पब्लिकेशन विच केम फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, नाइस हिंदी प्रोडक्शन। ऋचा जी सुंदर और अद्भुत कविताएं नीरज जी की, विच केम फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, नाइस हिंदी प्रोडक्शन। ऋचा जी सुंदर और अद्भुत कविताएं नीरज जी की। पैट

0: राजीव निगम जी बोलते हैं, इट्स न्यू इन्फो फॉर मी नीरज जी फ्रॉम एरिया विच कम्स फ्रॉम माई ग्रैंडफादर्स होम डिस्ट्रिक्ट इटावा. इटावा की बात हो रही है साहब. स्टिल आई हैव ग्रेट कनेक्शन विद पीली कोठी कोठरा शमशेर खान इटावा. अच्छा ये हैं. और हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें जो संदेश भेजें तो सिर्फ रेडियो के बारे में भेजें, स्पेशली संडे को 9 से 11 बजे. बाकी समय आपके पास समय समय है, उसमें आप अच्छी अच्छी बातें लिखिए, कुछ ऐसा मत लिखिए जिससे कि किसी को अच्छा ना लगे. तो आपसे अनुरोध इसी बात का है. तो शैलजा जी, अभी तो हमारे पास करीब करीब कितना 10 मिनट हैं.
1: हाँ.
0: तो आप अब और क्या पूछना चाहती हैं विजेंद्र जी से?
1: तो नीरज जी की, नीरज जी से मेरा अंतिम जो हुआ था साक्षात्कार, तो उस समय वो इंडियन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट की सरकार, नीरज जी को भाषा संस्थान का अध्यक्ष नामित किया था.
0: अच्छा.
1: तो हालांकि वो थे तो पोइट, लेकिन उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया था मुलायम सिंह जी के, क्योंकि वो भी उनके फैन थे, तो उन्होंने उनको दिया. तो मैंने उनका तब उनके जाने से पहले, उनकी मृत्यु से कुछ वर्षों पहले, और जो जब मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए गई थी, वो तो रजाइल ओढ़ के और कमरे में लेटे हुए थे.
0: अच्छा.
1: तो मैंने कहा कि नीरज जी अब वो बैठ तो जाइए, आपका इंटरव्यू लेना है, आप रिकॉर्डिंग करनी है इसकी. कह लेंगे नहीं ठीक है, मैं लेटा हुआ हूँ, तुम यहीं बैठ जाओ. तो सोचिए कि हम वहीं उनकी खटिया पे बैठे और वो रजाई ओढ़े ओढ़े हमको जवाब देते रहे. तो ये उनका था. तो बहुत सी उनकी इतनी बातें हैं कि हम लोग कितना कर सकते हैं.
0: नहीं, बड़ी अच्छी बात है. और ये है कि आपका काफ़ी संपर्क रहा उनसे और यहाँ आए भी थे. हमें तो पता नहीं लगा. लेकिन ये कि पता नहीं कौन से ईयर में आए थे.
1: यहाँ पे आए थे 95 में वो.
0: अच्छा, 95 में हम शायद एक आध साल ही हुआ था हम आए हुए. नए नए लोग थे, शायद स्ट्रगल कर रहे होंगे यहाँ पर आने के बाद. एक दो साल तो लगता है. और तो विजेंद्र जी, ऐसा है कि आपने एक आशा तो शुरू की है, इसके अलावा हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है. हालांकि काफ़ी संस्थाएं इस बारे में काम कर रही हैं कि जहां नए माइग्रेंट्स आते हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनके डायरेक्शन के लिए, उनके गाइडेंस के लिए, हालांकि काफ़ी लोग कर रहे हैं, अगर इसी में कुछ इस तरह से जुड़ाव हो जाए कि ये भी इसमें शामिल हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा. और एक बात और थी इसके साथ साथ, किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे और उनके दादा दादी अगर यहाँ पर नहीं हैं, तो किस तरह से कुछ समाज में होना चाहिए कि छोटे बच्चों को दादी दादा की कमी ना महसूस हो. क्योंकि माँ बाप अपना बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे थोड़े से बिज़ी तो होते हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरत होती है दादी दादा टाइप के लोगों से बातचीत करने में. और जो जो भाव या जो संस्कार दादा दादी दे सकते हैं, वो शायद माँ बाप नहीं दे पाते हैं. तो कुछ इस तरह का कुछ हो, कुछ संस्था,
1: बहुत बड़ी सेवा होगी,
0: बहुत बड़ी सेवा होगी.
2: ये ठीक, आप ठीक कह रहे हैं. हमारे पास कुछ स्कूल से बच्चे आते हैं छुट्टियों में, अभी अच्छा, भी आए थे मंडे को भी. तो ये जो वॉलंटरी वर्क होता है, डूको फेडरमा के बच्चे आते हैं और कुछ कॉलेज के प्लेसमेंट में भी आते हैं. तो ये आपका जो स्वभाव बहुत बढ़िया है. तो कुछ साल पहले हम ग्रैंड पेरेंट्स डे करते थे, तो ये इस आपका जो पॉइंट बहुत बढ़िया है, तो इसको दोबारा हमें कंटिन्यू करेंगे, ताकि चाहे वो उनकी फैशन परेड करें, चाहे डांस कंपटीशन करें या पिकनिक करें. सो ये हम चाहेंगे कि जिन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ नहीं है, पर दूसरे तो हैं ना,
0: हाँ,
2: वो प्यार तो दे सकते हैं, हाँ, बुजुर्गों से. तो कोशिश करके हम प्रोग्राम जरूर करने की कोशिश करें.
1: चलते चलते हम उनकी श्रद्धांजलि के लिए, नीरज जी की श्रद्धांजलि के लिए, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का कुछ वक्त बता सकते हैं. और इसमें बिल्कुल 2 मिनट सिर्फ लगेंगे. तो महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने नीरज जी को हिंदी की वाणी कहा था. उनकी कविता कवि की मृत्यु उन्होंने लिखा था कवि की मृत्यु, उन्होंने

0: नीरज जी के जीवन समाधान पर खरी उतरती है। सूरज बोला यह बड़ी रोशनी वाला था, सूरज बोला यह बड़ी रोशनी वाला था, मैं भी न जिसे भर सका कभी उजाले से। रंग दिया आदमी के भीतर की दुनिया में इस गायक ने अपने गीतों की लाली से। तो ये रामधारी दिनकर जी ने कहा था। और नीरज जी हृदय के सुषुप्त स्वरों को झंकृत करने वाले महान कलाकार श्री नीरज जी के हम आज जन्म आभारी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वो हर किसी के हृदय में बनी हुई है।
1: अच्छा, तो विजेंद्र जी और पंकज जी, आप हमारे मेहमान बनकर यहाँ आए, आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप बहुत अच्छा किया। ये कार्य आप अक्सर किया करिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और हमारे श्रोताओं को और अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल,
1: है ना। शैलजा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
0: नहीं, आप कहिए पंकज जी।
2: मैं यही कहना चाहूँगा जी, जैसे नदी अपना पानी नहीं पी सकती,
0: हाँ,
2: पेड़ अपना फल नहीं खा सकता,
0: वाह वाह,
2: और सूरज की जो किरणें होती हैं,
0: हाँ,
2: वो सूरज के लिए नहीं होती हैं, वो हम सबके लिए हैं।
0: हाँ,
2: ऐसे ही अगर हम सब मिल के,
0: हाँ,
2: किसी अपनों के लिए सबके लिए करें तो हम सबका सिर्फ दिन ही नहीं जिंदगी अच्छी हो जाएगी।
0: कितने सुंदर विचार हैं आपके, बताइए। इन्हीं विचारों से प्रेरित होता है आशा का भविष्य।
1: और इसी के साथ नीरज जी का एक बहुत सुंदर गीत आपको
0: छोड़ जाते हैं।
1: और श्रोताओं, आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
3: आपका बहुत शुक्रिया।
1: और जिस तरह से आप हमें संदेश भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पर, हमारा प्रोत्साहन होता है, आप ऐसा करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हम आपको एक सुंदर सा गीत छोड़े जा रहे हैं, आशा है आपको पसंद आएगा।
0: दो गुलाब के फूल छू गए जब से होठ अपावन मेरे, ऐसी गंध बसी है मन में सारा जग उपवन लगता है।
4: ओटियों में ढोला जाए फूलों का शबाब, उसमें